0: ये जो अभी सुना आपने, वाओ, हाड़ी संधु, किरण बाजवा, फुल पंजाबी स्वैग, डेब्यू में नंबर 10 इस हफ्ते फ्रॉम वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, डायरेक्टेड बाय वरुण्स डैड, द कॉमेडी किंग डेविड धवन। सच बताओ, तौबा तौबा की याद आई ना, वही विकी कौशल वाला गाना, वही एनर्जी, वही डीएनए। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। वरुण धवन, डेविड धवन के बेटे, बॉलीवुड के कोट अनकोट नेपोटिज्म पोस्टर बॉय, सिवाय एक चीज के, डेविड धवन सर को पता ही नहीं था कि वरुण एक्टर बनेंगे, विच इज वाई दिस एंट अ नेपोटिज्म स्टोरी एंड विच इज वाई आई लव वरुण। देखो, इस इंडस्ट्री में बाप रास्ता साफ करता है, कारपेट बिछाता है, दरवाजा खोलता है, एंड डेविड धवन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनके घर में दरवाजा ही बंद था एंड वरुण ने खिड़की से छलांग लगाई।
1: They were talked about films, huh? All of a sudden, ये करण जोर के बाद चला गया। I want to assist you. So that's how that picture he did now with my name is Harry. He went there, shooting there, and अचानक क्या होता है? करण comes home. He said, David, I want to introduce him. I said, very good, yeah. Then photo session and हुआ. He and Siddharth, they looked young and youthful, very good. And how the film started, some days he used to be very upset also, used to come. I said, listen, my son, you're damn good. Your confidence is something else. Just remember one thing. Kandhe pe pair rakho, kood ja. Darna nahi, ye nahi, kood ja. Ho gaya, maine kar diya. I remember when the film released, Amit ji, Jaya ji ka message aaya, lambi race ka ghoda hai.
0: Lambi race ka ghoda. Bachchan saab ne kaha, release ke din, एक बाप को उनके बेटे के बारे में। ये इन दोनों की चौथी फिल्म है, लेकिन ये जो रास्ता है अपने डैड के साथ काम करने का रास्ता, वो वरुण ने खुद बनाया है। नंबर 9 पे जो गाना है, इट्स गॉट अ कनेक्शन, चांद मेरा दिल, वो भी करण जौहर की फिल्म है, प्रोड्यूसर के रूप में, वही करण जिन्होंने पहले दिन दरवाजा खोला था वरुण के लिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में भी और जिंदगी में भी, जो शुरुआत से आखिर तक साथ रहते हैं। ये है गाना नंबर 9, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला।
2: नंबर 9।

0: मैं और तू किसी एक फिल्म का गाना नहीं लगता, लगता है जैसे कोई फीलिंग थी जिसको फाइनली अल्फाज मिल गए। धुरंधर 2 का पूरा एल्बम कुछ वैसा ही है, फिल्म भी म्यूजिक भी दोनों साथ हाथ थाम के चल रहे हैं। आई एम सुरेन एंड सच ये है कि ये केमिस्ट्री हमेशा नहीं मिलती, कभी कभी म्यूजिक इतना बड़ा हो जाता है कि फिल्म उसके साए में छुप जाती है। 2013 आशिकी 2, फिल्म डीसेंट थी, इट वॉज वार्म, इट वॉज फील गुड, लेकिन वो गाने वो किसी और ही मिट्टी के बने थे। मिथुन ने एक बेट लगाई थी पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ, सिंप्लिसिटी पे, सिंसियरिटी पे बेट। जब सब अब बीट गानों के पीछे भाग रहे थे, मिथुन खामोश खड़े रहे।
1: हमारे इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट में प्रेशर ही प्रेशर होता है, क्योंकि हर कोई हिस्ट्री बनाना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग हिस्टोरिक। कोई भी ये सोच के नहीं आता कि चलो एक मीडियोकर फिल्म बनाते हैं। और मैं उस प्रेशर से अपने आप को कभी नेगेटिव तरीके से नहीं लेता हूँ, मैं उसको इसी तरीके से लेता हूँ कि लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और उनकी उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है। बहुत सारे ऐसे स्लो सॉन्ग्स हैं जिन्होंने बहुत गहरा असर किया है आवाम के ऊपर, तो फिर आज भी क्यों नहीं, क्योंकि आज भी लोग वही हैं, आज भी इंसान दाल रोटी खाता, तो फिर आज वो ऐसे गाने क्यों नहीं सुनेगा। खाली यह है कि वो सही तरीके से पेश किए जाए और उसमें सिंसियरिटी हो। तो मैं इस रास्ते को मैंने इख्तियार किया और मैंने ठाना कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मिथुन तुम अब थोड़ा से अपबीट सॉन्ग्स करो और ये, और मुझे उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन उसके पहले मैं ये प्रूव करना चाहता था, मैं ये दिखाना चाहता था कि ये म्यूजिक अपने आप में सादगी से भी आप जो है आवाम को प्रभावित कर सकते हैं, और तुम ही उन्हें उस बात को सिद्ध कर दिया।
0: सोचो कब सुना था आपने तुम ही हो पहली बार, साथ कौन था, क्या आप अकेले थे? खाने का काम ही यही होता है, वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री में घुस जाता है बिना आपसे पूछे। फिल्म स्क्रीन्स पर आई और स्क्रीन से उतर भी गई, लेकिन वो गाने वो आज भी चल रहे हैं, किसी के ईयरफोन्स में, किसी के दिल में उनकी आवाज बनकर। 13 years, ये मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, अभी भी फील्स लाइक यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
2: टॉप 20 रिवाइंड।

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स, तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

मोहित चौहान, एआर रहमान, निशात कामिल, द एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए। तू है तो

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। और आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है,
1: नंबर 4।

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 प्लेसेस अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 प्लेसेस, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम, एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

RARE, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा, वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that, क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची. नंबर

0: 11 बार 11 टाइम्स ऑन नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल, आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो पैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: छोटा बॉय बन जाता हूँ।
1: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस। ऑन टू द नेक्स्ट। प्लेन है प्राइवेट, लाइफ है ब्लेस। मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस्का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: द मैजिक ऑफ कोक स्टूडियो भारत इज बैक. गाने का नाम है ए अजनबी. आदित्य रिखारी की आवाज, रैबिट आवर की प्रोडक्शन अलोंग विद कुटले खान. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. गाना नंबर 9 पर हमने सुना ए अजनबी. ऐसा नहीं होता लाइफ में, कभी कभी कोई इंसान होता है जिसको हम पूरी तरह पाते भी नहीं है लेकिन कंप्लीटली लूज भी नहीं करते हैं. वो एक बीच का एक स्पेस है जहाँ कोई नाम नहीं है, ना उसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते, क्लोजर भी नहीं मिलता. ए अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दीज सॉन्ग्स इज कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Root. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. ना अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a कोक स्टूडियो सॉन्ग, पिछले सीजन का है. एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. @RJ कनिका पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़े इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके, गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है, एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़ कर ला के प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में, वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग्स जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेज का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने ही गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushboo mitti di khushboo.
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी, जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहां लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा सिंगर सॉन्ग राइटर्स उसी ऑनेस्टी को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई गेट इट, इंटरनेट हैज बीन आस्किंग फॉर आयुष्मान खुराना. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना, गाने का नाम है यही हूं मैं. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: मैं खोया तो ढूंढ नाइयो, चुपके से एक ख्वाब जाइयो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट RJ कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इस इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौड़ का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रोर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 5।

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स, तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

मोहित चौहान, ए आर रहमान, निशात कामिल, द एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए।

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। पर आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है।
1: नंबर 4।

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 प्लेसेस अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 प्लेसेस, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम, एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

Aari Aari, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा, वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that. क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची. नंबर 1.

0: 11 बार 11 टाइम्स और नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल, आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉक 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: Only on Mirchi. It's hot. Radio Mirchi. Radio Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड चलो क्विकली मौसम का हालचाल जान लेते हैं. अभी फिलहाल टेम्परेचर है 45 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स नाइस एंड क्लियर. लेकिन हवा जो है वो कुछ एटीट्यूड के साथ इस टेम्परेचर को फील करा रही है 40 डिग्रीज फारेनहाइट तक. आज का फुल डे सीन ये होने वाला है कि क्लियर स्काइज रहने वाला ऑल द वे. मॉर्निंग्स थोड़ी सी चिली होने वाली है एट 44 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन आफ्टरनून में फुल ग्लो अप होने वाला है. द टेम्परेचर इज गोना गो अप टू 72 डिग्रीज फारेनहाइट. मतलब एक ही दिन में दिल्ली विंटर से मुंबई समर का एक्सपीरियंस तुम्हें होने वाला है. एंड गेस व्हाट, आज का हाई कल से ज्यादा है. Yesterday maxed at 61 degrees Fahrenheit and आज 72 degrees Fahrenheit तक officially जाने वाला है. तो outfit tip ये है कि layer के player बनो, सुबह सुबह से अपना sunblock SPF 50++++ लगा कर ही बाहर जाना. Keep yourself hydrated and keep listening to Mirchi Mornings with me Priscilla. अभी आने वाले Mirchi Dar bangers only for you. While you head to Instagram and X to follow me. मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHI PRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
2: Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars in the race. So now she got in them.

It's hot. मिर्ची It's hot. 98.3 मिर्ची It's hot.

गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में। यू आर लॉक्ड इनटू मिर्ची मॉर्निंग्स और अब चलने वाले हम टाइम ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले 1799 में टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जिन्हें कहा जाता है फॉट टिल हिज लास्ट ब्रेथ एट श्रीरंगपटना। फिर 1886 में शिकागो का हे मार्केट अफेयर, जहाँ 8 आवर वर्क डे के लिए प्रोटेस्ट ने ग्लोबल लेबर मूवमेंट को स्पार्क किया। 1919 में बीजिंग में स्टूडेंट्स ने मे 4th मूवमेंट स्टार्ट किया। 1970 में कैंट स्टेट शूटिंग्स, विच इज अ सीरियस रिमाइंडर कि प्रोटेस्ट का प्राइस काफी हैवी हो सकता है। और फिर 1979 में मार्गरेट थैचर बिकेम यूकेस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और हाँ, आज के दिन स्टार वॉर्स डे भी मनाया जाता है, मे द 4th बी विथ यू के लिए। एंड ऑल्सो इट्स इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, क्योंकि रियल लाइफ हीरोज को एक टाइट वाला सलूट देना बनता है। अभी फिलहाल मुझे फॉलो करना बनता है, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: देखो मंडे मोटिवेशन का कोई फेस नहीं होता, लेकिन अगर होता तो वो एमएमए फाइटर की तरह होता। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज एक बहुत ही बढ़िया हेडलाइन लेकर आए तुम्हारे लिए। इंडिया की एमएमए स्टार सोनम जोम्बा ने फिर से कर दिखाया है क्या। शी जस्ट डिफेंडेड हर MFN स्ट्रॉवेट वर्ल्ड टाइटल एट मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 और ब्राजील की फाइटर मैरिस्टेला अल्वेस को क्लीन बीट दे दिया। मतलब बॉस ये हुई ना देसी पावर, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू द ग्लोबल MMA स्टेज। सोनम ने लिटरली पंचिंग स्टीरियोटाइप्स किया है, विंग बेल्स वाइल शी इज एट इट। एंड ऑनेस्टली अगर तुम मंडे ब्लूज फील कर रहे हो तो जस्ट रिमेम्बर कोई तो है जो सुबह उठकर लोगों को लिटरली नॉकआउट कर रहा है, और वो भी हमारे इंडिया से। बिग शाउट आउट टू सोनम, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि नारी की जीत है, नॉर्थ ईस्ट की जीत है और इंडिया की जीत है। एंड अभी फॉलो करो योर गर्ल प्रिसला को ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड यू हैव जस्ट एंटर्ड द मिर्ची वर्ल्ड्स एके मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर वाइब्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी तुम्हारी कॉफी। हाँ जी, आज है 4th of May यानी कि मे द 4th बी विथ यू वाला डे, और इसका देसी वर्जन है मे द चाय बी स्ट्रॉन्ग एंड वाईफाई स्ट्रॉन्गर। अभी अगर तुम सबवे में खड़े हो या कार में ट्रैफिक के साथ बैटल कर रहे हो, कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑफिशियली अ मॉर्निंग वॉरियर। बस लाइट सेबर की जगह कॉफी कप पकड़ो और बोलो आई एम वन विद कैफीन। तो आज के शो में होने वाला फुल ऑन मस्ती, मिर्ची म्यूजिक एंड मच मोर। अभी फिलहाल आने वाले हैं गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स, क्योंकि मंडे हो या 4th of May हमें तो लगाने मिर्ची है। फिलहाल मुझे अपनी फेवरेट आरजे को फॉलो तो कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं देसी फैमिली में हूँ, प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज योर मिर्ची आवक का थ्री। सबसे पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वाज स्पॉटेड डीजेइंग एट अ वेडिंग। हाँ भाई, डिप्लोमेसी बाय डे एंड डीजे बाय नाइट। इंटरनेट ने तुरंत नाम दे दिया सेक्रेटरी ऑफ एवरीथिंग, बट अपेरेंटली ही इवन वंस फिल्ड इन एज प्रेस सेक्रेटरी एज अ प्रैंक। नंबर टू पर इंडियन ओरिजिन बैंकर विश्वास राघवन वॉज फायर्ड एंड देन हायर्ड विद इन 24 आवर्स इन अ मैसिव डील। लेकिन पास्ट में उनपे वर्क प्लेस बिहेवियर को लेकर कंप्लेन्ट्स भी हुए हैं, इंक्लूडिंग एन इनअप्रोप्रिएट कमेंट अबाउट अ कॉलीग। एंड नंबर थ्री पर सिंगर दिलजीत दोसांझ पॉज्ड हिज कनाडा कॉन्सर्ट आफ्टर स्पॉटिंग कंट्रोवर्शियल फ्लैग्स इन द क्राउड। उन्होंने कामली कहा है, कीप द फोकस ऑन म्यूजिक नॉट डिविजन। And that's it for Mirchi Hour का 3. For this hour, मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में। Connect करो मुझसे Insta और X पर, मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। And WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244। Drop in your messages and right now stay tuned and stay hot.

मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड क्या तुमको पता है सेल्फ स्टाइल्ड किंग ऑफ स्विट्जरलैंड जिनका नाम है जोनस लवीनर, भाई साहब ने क्या किया है? एक लीगल लूप होल यूज करके, वेट फॉर इट, 29 एकर्स ऑफ लैंड फ्री में कैप्चर कर लिया है। हाँ जी, बिल्कुल हमारे देसी ठग्स की तरह। 11 लाख एंड 7000 स्क्वायर मीटर्स का लैंड, मतलब इतना स्पेस कि तुम्हारे घर का रेंट का ट्रॉमा भी थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बंदे ने खुद को 2019 में किंग डिक्लेयर भी कर दिया था। DIY मोनार्की एनीवन। और उनका एम्पायर इज 83 स्ट्रेचेस ऑफ रोड जिनके मेंटेनेंस के लिए वो लोगों से चार्ज भी करते हैं, मतलब फ्री का लैंड और उसी का सब्सक्रिप्शन मॉडल। भाई इसे तो इंडिया में होना चाहिए। शार्क टैंक वाले इसे मिस कॉल दे देकर परेशान हो गए। वैसे पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली थोड़े से अपसेट हैं क्योंकि ये पूरा लूप होल का गेम है, बट ऑनेस्टली हम देसी जो हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि यार ये चुकाड़ हमें क्यों नहीं आया। वेल यू टेल मी द रीजन। DM करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल चिपक के बैठो यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ओला, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे एकदम लेट, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तुम अकेले नहीं हो जो अपना हैप्पी वाला बर्थडे मना रहे हो। तुम्हारे साथ साथ है एक्टर विल आर्नेट एंड यंग टैलेंट एलेक्स लॉथर। म्यूजिक लवर्स के लिए रैंडी ट्रैविस एंड फैशन मीट्स हॉलीवुड वाइब्स के लिए किमोरा ली। और हमारी देसी साइड से है द गॉर्जियस त्रिशा कृष्णन एंड वेटरन एक्टर अनंग देसाई। ये शायद खिचड़ी में बाबूजी का रोल प्ले करते हैं। तो आज का प्लान सिंपल है, केक खाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रील बनाओ और लाइफ को बोलो मैं अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हूँ। मुझे केक भेज भी सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा आईडी है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो द मिर्ची मॉर्निंग्स। आज आशा जी को हम याद कर रहे हैं और साथ में अब सुनने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,720, $4,720 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, जब हम अक्षय तृतीया की सेलिब्रेशंस के लिए इस वीक में एंटर कर रहे हैं। 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट, बिना किसी हिडन फी के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए अक्षय तृतीया की सेलिब्रेशंस के लिए 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट में गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी घर लेके जाएं, और साथ में किस तरीके से सिल्वर ब्रेसलेट और गोल्ड बार आप डायमंड ज्वेलरी की परचेज के साथ अक्षय तृतीया के गिफ्ट में अपने साथ घर ले जा सकते हैं। लॉग इन करें rajjewels.com पर। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। यहाँ पे तुम अपने फेवरेट आशा भोसले सॉन्ग्स भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू प्ले them on Mirchi Mornings. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: वेलकम बैक टू द सेकेंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और अब अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले नेपाल ने इंडिया और चाइना को बोला है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक डिस्प्यूटेड राउट लिपुलेख से ना हो, कॉलिंग इट देयर टेरिटरी. एंड इंडिया का रिस्पांस, क्लेम्स को अनजस्टिफाइड कहा गया है और याद दिलाया है कि ये राउट डेकेड से यूज हो रहा है. एंड नंबर टू पर इंडियन ओरिजिन करमबीर सिंह कांग जस्ट बिकेम कैनेडाज फर्स्ट सिख मरीन इंजीनियर टू सर्व विद अ बियर्ड. रूल्स रिलैक्स हुए हैं एंड बैरियर्स ब्रेक हुए हैं और साथ में रिप्रेजेंटेशन भी लेवल अप हुआ है. एंड शाउट आउट टू गुरप्रीत बाजवा, फर्स्ट टर्बंड सिख डेक ऑफिसर कैप्टन. एंड नंबर थ्री पर आईपीएल से बिजनेस जायंट्स लक्ष्मी निवास मित्तल, आदित्य मित्तल एंड आदर पूनावाला हैव बॉट राजस्थान रॉयल्स फॉर अ कूल $1.65 billion. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 2444. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू राशि जोन नंबर वन। यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं फर्स्ट सिक्स राशियों की।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इरीज यानी मेष राशि, आज फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। जो काम रुक रहा था उसे थोड़ा सा ब्रेक पर जाने दो। मे बी तुम गलत डायरेक्शन में ग्राइंड कर रहे हो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 19। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पीस चाहिए तो नेगेटिविटी वाले लोगों से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, इमोशनली नॉट कोविड स्टाइल। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज का मूड है काम करना है बट मन नहीं कर रहा, लेकिन बॉस कमिटमेंट्स तो निभाने ही पड़ेंगे ना, नेक्स्ट टाइम ओवर प्रॉमिस मत करना। लकी कलर इज सनशाइन येलो, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, आज थोड़ा सा इमोशनल जस्टिस मोड ऑन हो सकता है, किसी को रियलिटी चेक देना पड़ सकता है, बस वॉल्यूम कंट्रोल में रखो। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, आज लोग ज्यादा बोलने वाले हैं, लाइक पॉडकास्ट बिना पॉज के, अपने इयर्स को ब्रेक दो, हेडफोन्स बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं आज के दिन। लकी कलर इज रॉयल गोल्ड, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, न्यू आइडियाज एक्साइटिंग लगने वाले हैं, बट होल्ड ऑन, हर शाइनी चीज गोल्ड नहीं होती, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाने की जरूरत है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वॉज योर फर्स्ट सिक्स राशिज ऑफ राशि जोन। अब बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी मैं इन जस्ट अ वाइल, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर। मेरा नाम है प्रिसला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। ये है राशि जोन नंबर 2, यानी कि बची हुई 6 राशियों का फुल फिल्मी फ्यूचर।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, आज किसी स्टबन इंसान से क्लैश हो सकता है। एडवाइस, डोंट आर्ग्यू, जस्ट ग्रेसफुली एग्जिट लाइक अ क्वीन। लकी कलर इज बेबी पिंक। लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, प्रोजेक्ट टफ लग रहा है, पॉज मारो यार, ओवर पुशिंग से कुछ नहीं मिलने वाला, लेट इट ब्रीद। लकी कलर फॉर यू इज डीप मरून। लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, तुम फुल गो गेटर मोड में हो आज, बट ये याद रखो सब तुम्हारी स्पीड पे नहीं चलने वाले हैं, पेशेंस भी एक स्किल है बॉस। लकी कलर इज बर्नट ऑरेंज। लकी नंबर इज 3। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, रीसेंट चेंजेस थोड़े से हैवी लग रहे हैं, लेकिन डोंट सल्क, फ्लिप द स्क्रिप्ट एंड मेक इट वर्क फॉर यू। लकी कलर फॉर यू इज स्टील ग्रे। लकी नंबर इज 10। Aquarius यानी कुंभ राशि, आज अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलो, बट डोंट बुलडोज अदर्स, रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन बीइंग राइट हमेशा। लकी कलर इज एक्वा ब्लू। लकी नंबर इज 11। एंड Pisces यानी कि मीन राशि, ड्रीम बिग, एनर्जी ऑन हो गई है अब, बट वॉलेट बोल रहा है इजी ब्रो, इजी बजट स्मार्टली, सपने भी पूरे होंगे और लाइफ पे अच्छी चलेगी। लकी कलर इज सी ग्रीन। लकी नंबर इज 2। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन नंबर 2। मैं हूं सला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर, मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

to my desi people. मैं हूँ प्रिस्तला, तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings and it's about to wrap up. But before I leave, let's talk about China में एक school event के दौरान एक humanoid robot suddenly lost control. और फिर क्या था? बंदा full kung fu mode में आ चुका था. हवा में kicks मार रहा था. Dancers shock हो गए. मतलब rehearsal चल रहे थे या robot versus human चल रहा था? ये कौन से गेम्स का सीक्वल है पता नहीं. पुअर डांसर्स बस बचते बचते साइड हो रहे थे अंटिल फाइनली रोबोट ने खुद ही ड्रामेटिक गिरावट ले ली एंड फिर एक इंसान आया और उसको कंट्रोल किया. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एआई काफी कूल है बट कभी कभी ये जैकी चैन भी बन सकता है. तो गाइज इसी नोट पर आज का शो यहीं पर खत्म होता है. मैं हूँ प्रिस्तला तुम्हारे साथ में. अब टाटा बाय बाय बोल रही हूँ तुम्हें Mirchi Mornings पर से. लेकिन मुझे इंस्टा और एक्स पर तुम फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो. वहां पर मेरा हैंडल है Mirchipris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर अपने messages drop करो 9033 Mirchi पर, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: यार आज ना मुझे बचपन का वो किस्सा याद आ रहा है जब मैंने पहली बार हाल ही वर्ड सुना था।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirchi. अरे यार, एक शाम की बात है जब दूरदर्शन पर ना वो शाम वाली न्यूज जो होती थी ना वो चल रही थी, और न्यूज रीडर ने वर्ड कहा हाल ही में। आगे की न्यूज मुझे याद नहीं क्योंकि मेरी सुई अटक गई थी हाल ही पर। अब मैंने पलट कर मम्मा से पूछा कि यार मम्मा, ये हाल ही कौन सी जगह है। मम्मा तब जोर जोर से हंसी और मैं आज तक हंसती हूँ जब इस किस्से को याद करती हूँ। तो क्या आई रियली थॉट कि हाल ही कोई जगह थी, बट हे, हाल ही टाइम की दुनिया में जगह ही तो है यार, एंड दैट इज राइट नाउ। तो चलो हाल ही में जीते हुए 90s में चलते और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: राजा हिंदुस्तानी की रिलीज के बाद जब भी मासी और कजिन्स लंबी छुट्टी स्पेंड करके नेक्स्ट डे जाने वाले होते थे ना, तो हम ओवर द टॉप एक्टिंग करते हुए यही गाना गुनगुना रहे होते थे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड फिल्म राजा हिंदुस्तानी भी अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म थी। तो मैंने जब ये फिल्म देखी थी बचपन में, तो मुझे उस टाइम पसंद नहीं आई थी, मेरा टेस्ट वैसा नहीं था ना यार, लेकिन उससे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। एंड द मूवी वॉज लाइक बाय अ लॉट मेनी अदर पीपल। लेकिन पता है, इस फिल्म को करने के लिए आमिर खान तैयार ही नहीं थे, लेकिन देन धर्मेश दर्शन कन्विंस्ड हिम कि ये फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियल हिट रहेगी, विच टर्न ट्रू। और इस फिल्म से करिश्मा को एक नए अवतार में देखा गया था। आई रिमेम्बर लुकिंग एट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ स्ट्रेट हेयर लुक एंड थिंकिंग वाओ। उस टाइम मेरी इतनी वोकैबुलरी हुआ करती थी, तो वाओ के अलावा और कोई शब्द नहीं निकला मेरे मुंह से। और इस मेकओवर ने करिश्मा को फैशन आइकॉन बना दिया था। एंड नॉट जस्ट स्टाइलिंग, बल्कि उनकी एक्टिंग भी इस मूवी में बहुत पावरफुल थी। सो मच सो दैट कि लोगों ने करिश्मा को रानी हिंदुस्तानी बुलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आमिर थोड़े खफा हो गए थे। खफा से भी कौन करता है वफा यार। इसे करते हैं दफा और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉट मिर्ची इट्स हॉट सारा ज़माना सारा का दीवाना मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आपको पता है राजा हिंदुस्तानी का द फेमस किसिंग सीन इज सेट टू बी बॉलीवुड्स लॉन्गेस्ट किसिंग सीन।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: जी हाँ, वे बिफोर मर्डर हैपेंड टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राजा हिंदुस्तानी का ये किसिंग सीन शूट हुआ था, लेकिन टाइम्स देन वर वेरी डिफरेंट। सो मच सो दैट कि करिश्मा कपूर वाज वेरी अनकंफर्टेबल डूइंग द सीन एंड देन शी आस्क्ड हर मॉम टू बी प्रेजेंट ऑन द सेट्स। और इस सीन को शूट करने में 3 दिन एंड 47 टेक्स लगे एंड बोथ आमिर एंड करिश्मा वो वेटिंग कि ये सीन कब खत्म हो। फिल्म मेकर्स वांटेड टू पुट दिस सीन का पिक्चर ऑन द पोस्टर्स ऑफ द फिल्म ताकि फिल्म के बारे में बातचीत हो, थोड़ी कहानियां बने, लेकिन इवेंचुअली ड्रॉप द आइडिया। अच्छा ही किया, क्योंकि तब तो डेफिनेटली लोगों की पाचन शक्ति इस सीन को पचाने की तो नहीं ही थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अच्छा बताओ, प्रीति जिंटा को सबसे पहले हमने स्क्रीन पर कहाँ देखा था?
2: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप किसी फिल्म का नाम गेस करने वाले हो तो नो, द राइट आंसर इज लिटिल कैट।

Yes, she used to be the little girl. और साबन की ताजगी के साथ साथ उनकी बबलीनेस की ताजगी भी इस एड में दिखती है। जब ये एड आया था तो कोई प्रीति जिंटा को द प्रीति जिंटा की तरह नहीं जानता था। एंड शी वॉज नोन एज द लिटिल गर्ल ओनली देन। फिर पर्क वाली लड़की के नाम से उनको जाना जाता था। उनकी बबलीनेस के साथ साथ अगर कुछ और नोटिस हुआ तो वो है उनके डिम्पल्स, जिन गड्ढों के प्यार में सब धीरे धीरे गिरते ही जा रहे थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स

वैसे तो केके सर की आवाज सुनते के साथ ही जुनून आ जाता है, लेकिन दिस गाना मेक्स मोर सेंस अगर आपने एक कप ऑफ कॉफी हाथ में ले रखी हो और फिर आप इस गाने को सुन रहे हो, तो वाकई में है जुनून। और फिर ये जो है जुनून वाला सुर है ना, ये एकदम के सर से भी ऊपर निकल जाता है, लाइक हमारा गला फाड़ के निकल जाता है। सो मच सो दैट कि नो वन कैन लिसन टू इट एंड नो वन शुड लिसन टू इट। इट शुड जस्ट बी यू एंड दिस सॉन्ग बंद इन वन रूम, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ ऊपर जाए आपके सुर के साथ साथ। किसी और ने सुन लिया ना तो सुर और कॉन्फिडेंस दोनों नीचे गिर जाएंगे।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और यहाँ पर आपको नहीं गाना पड़ेगा मेरे यारा, यहाँ पर तो आपको सिर्फ गाना सुनना है और पहचानना है कि ये जो दो गानों की धुनें मैं आपस में मिला के आपके लिए चला रही हूँ, ये दो गाने हैं कौन से एक्चुअल्स में। तो here comes the songs, give it a listen।

0: ओके डोके, नाउ इट्स रियली सिंपल. आपने बस डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो. एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: Wanna natch all night? Do you feel alright? Wanna natch all night?

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार ममता कुलकर्णी का वो गाना बड़ा एपिक था यार, भोली भाली लड़की, टिक। म्यूजिक इसका कितना सही था, लेकिन ये म्यूजिक इस फिल्म का नहीं था।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अंदर की बात बाहर लाने का वक्त आ गया है बॉस, क्योंकि ये जो गाना है भोली भाली लड़की, इस म्यूजिक का पीस जो है ये ओरिजिनल नहीं था। एंड ऑफ कोर्स अनु जी ने उसे उठाया था फ्रॉम अ तमिल म्यूजिशियन जिनका नाम है विद्यासागर, और उनका गाना बोथाई एरिपोचू, उससे इस गाने को इंस्पायर किया गया था। हियर कम्स द ओरिजिनल ट्रैक।

बस क्या, ऐसे ही थोड़ी ना अनु जी को पहुंचा हुआ कहा जाता है यार। वो कहीं पे भी पहुंचकर म्यूजिक लेकर आ जाते थे यार। यूट्यूब ने नुनी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज AI के जरिए सेलिब्रिटीज की as good as real but controversial pictures रिलीज होती नजर आ रही हैं। लेकिन वो टाइम याद है जब एक रील धुलवाना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और रील धुलवाना तो बड़ी बात थी ही, साथ ही साथ काफी सारी फोटोग्राफ्स अगेंस्ट द लाइट खींचने से खराब भी हो जाया करती थी, तो कुछ भी ऐसे में अंडू नहीं कर सकते थे। वो वाली रील्स और वो वाली पिक्चर्स वैसी की वैसी ही धुल के आया करती थी। आज फिल्टर्स लगाकर पिक्चर्स सरियल बना दी जाती हैं, लेकिन तब पिक्चर्स इतनी रियल निकल कर आती थी कि अगर कोई एम्बैरेसिंग का पोज देता हुआ या हरकत करते हुए कैप्चर कर लिया जाता था ना, तो बॉस वो इंसान चाहे या ना चाहे वो फोटो भी एल्बम में लगती थी या फ्रेम्स में भी लगती थी, क्योंकि यादगार के नाम पर मात्र 36 मौके मिलते थे कैमरा पर कैप्चर करने के लिए। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन देयर वर लिटरली नो रीटेक्स। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Everybody remembers कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल ने वो जो पिंक कलर की स्कर्ट पहनी थी, क्योंकि उसी का तो इवेंचुअली ऋतिक रोशन के कैरेक्टर ने झंडा बनाया था।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And that pink color की skirt, ये हमारी आंखों में चमक गई थी, है ना? So much so that we still remember that pink color की skirt. Now, here comes the fact about that pink color की skirt, that while shooting for this film, अमीषा पटेल hated wearing that pink color की skirt. और उसके पीछे reason ये था कि वो pink color की skirt उन्हें अपने shooting के schedule के अंदर बहुत लंबे time तक पहननी पड़ी थी. Like वो गाना जो था जाने वन, that was also shot in that pink color की स्कर्ट। फिर उसके बाद जब वो लोग अटक जाते हैं, आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, भटक जाते हैं, एंड ऑल दैट आल्सो हैपेंड इन दैट पिंक कलर की स्कर्ट ओनली। अब जब इतना लंबा सीक्वेंस फॉर सो मेनी डेज उनको शूट करना था, एंड डे इन डे आउट उनको कोई चेंज नहीं मिल रहा था, तो ऑफ कोर्स बेचारी बोरी हो गई थी उस स्कर्ट में। लेकिन इवेंचुअली वही पिंक कलर की स्कर्ट झंडे के साथ साथ आइकॉनिक भी बन गई थी। After all, pink is panther. You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जिंदगी का सार है आज के टाइम में उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज भी मिशन कश्मीर से इस गाने के अंदर, जो कि कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: चुपके से सुन, आय हाय हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार। मतलब ये गाना जितना मेलोडियस है उतना ज्यादा आज के जमाने में नॉलेज भी दे रहा है। मतलब ये गाना बना उस टाइम पे था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब हमें थोड़ा बहुत तो आता था आज में जीना, लेकिन हम वो जो थोड़ा बहुत आता था ना उसे भी भूल चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ होता ये था जो कि हर एक ह्यूमन बींग के साथ होता है यार, कि आप होते आज में हो लेकिन कल परसों, आने वाले कल परसों के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे होते हो कि आज में नहीं होते हो। लेकिन आज तो और ज्यादा हो गया हमारे साथ यार, कि हम आज में होते जरूर हैं लेकिन हम आज में सोशल मीडिया में होते हैं, और फिर कल परसों तरसों चार साल बाद और पता नहीं कौन कौन सी एंजाइटीज पाल पाल के उस आज में जीना भूल ही जाते हैं। और तभी ये गाना बड़े काम की चीज होता है, क्योंकि ये गाना तो जीवन का सार है जिसका निचोड़ आज समझ में आ रहा है, विच सेज चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही। मेरी आंखों से देखो जरा, जो आपको ये बोल रही है कि वाकई में इस पल को सुन लो और अभी इस गाने को सुन ही लो। जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम। मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी ही बात है तो जरा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली मैं सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ओवरसाइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि बहुत ही कूल लगते हैं आजकल। लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे ही हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जा कर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उनपे बहुत खूबसूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मेनी ऑफ देम भाई, शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो, वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल, आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट ज़ीनत अमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिंपल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज। आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वाज टेलिंग मी कि डिंपल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडिल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Energy. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीना तमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीना तमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अमोरे मियो दोवे साई तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना, आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअस डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी, स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो, तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते हैं रादर। और ये जो प्रिंट्स था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। So, आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बैंग्स कह लो, फ्रिंज कह लो, ये सब लाने वाली थी साधना जी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स जो उस जमाने की हीरोइंस लाई और हमने इस जमाने तक आज तक हम उनको ट्राई करते हैं, उनको पहनते हैं। इनका माथा बहुत चौड़ा था तो एक्चुअली में डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा था कि ये ना अपने माथे को ढकने के लिए कुछ आगे के बाल कटवा लें, और साधना जी ने जब ये किया तो उनकी स्टाइल इतनी फेमस हुई कि कॉलेज की हर लड़की उस समय बैंग्स, तब ये बैंग्स नहीं कहे जाते थे, इनको साधना हेयर कट कहा गया था जो आज भी इस नाम से चलता है, कभी कभी हम इन्हें बैंग्स कह देते हैं, कॉलेज की हर लड़की। हाँ, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, फोरहेड पे थोड़े से बाल कटवा करके साधना कट ही लेके घूमती थी। पुरानी जीन्स पे आज उस जमाने की फैशन की बातें हो रही है तो बस कहीं भी मत जाना।

जाता है? अरे अपने बाप का क्या जाता है? जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: चलेगा तो
1: पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे
2: हाईवे।
1: अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah.

0: साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।